0: हुसैन मणिक रईमस अब्दुल रहीम वणी दिहा 26 जून 2021 आवेफे वी मा बप्पा के मच्चन एवस तड़ने नोत वसीयत वाणमा हैदोग तेरेगा अलगुन मिन्ना गुलवा एकनी मवंगे ते में आइला के फरातुं इस्माइल शाह फोन हतें हाइंग हतरे हतरें हतरे हतरें हाय एमिनत शहनाज फोन हतें अशे तीने एके फहे फहें हतरे अहमद शाज फोन हतें अशें हतरे फहे सुमे हाइंग एके मोहम्मद शिमाज फोन हतें हतें हते एकें एके फहें एके अलगुन के कोको हेमवेर अलीहुरस मोहम्मद शिफाफ वणी देहा 26 मई फसवण दोगणी आवे फे वीमा मोहम्मद शिफाफ के मच्चन एवस तरण नोत वसीयत वाणमा देहा 26 जुलाई हवण दो चुला हाइवा होम दोग कुरिंग अलगणा गुलवा एकणी मेवंगे ते में आइला के फरातुं इब्राहिम सिनान फोन हतें हतें हते देन हाय देन वे अलगुन मेंगे मम्मा हालिफ मारंदु बिजली गे फातिमत जकरिया वणी देहा 26 जून नवारा गणी आवे फे वीमा मम्मा गे मच्चन एवस तरण नोत वसीयत वाणमा दिह दोग तेरेगा अलगुन मेंना गुलवा एकणी मेवंगे ते में आइला गे फरातुं अब्दुल हकीम आदम फोन हतें हते तीने सुमित दे हाएं हाए एमिनत मोहम्मद फोन हतें हते तीने नुए सुमे हतें अशे शाइफ अब्दुल हकीम फोन हतें हतें अशे फहेद दे अशे फहे एमिनत इनान अली फोन हतें हते सुमे नुए सुमे एकें अशे मिहार गडिंग 11:37:30 तेबे फ्लुंगाडो सम तेगिन दवनी तेवे राज्य केडो
1: इंहा 741 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव 890 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
2: दिवेहराज्य के अडू

0: గడి మెందురు ఎక్కజ్జే తిబై ఫ్రం అడు సుమతి గెందవని దే రాజ్జే గాడు.
1: ఇస్లామీ మింబరు
2: బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మాన్ రహీమ్. అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాత్. దేహరాజ్ అడుగు ఎమ్మె హైతరిన వర బాజ్యరి వాత్కొలం ఎదము ఇస్లామ్ ఇంబరుంగ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కై బదుల్ కొల్ యాలను అలోన్ మీ మహమ్మద్ రమీస్ ఇస్లామ్ ఇంబరుం మీ ప్రోగ్రామ్ కి ఇస్లామి కంత కాబే బుజారా హై అది దేహరాజ్ అడుగు గొడుగు ఇంగనస్తే ప్రోగ్రామ్ ఇస్లామ్ ఇంబరుం మీ సిల్సిలా గాలు మే గెనతం మీ గెందని హుకుర్ నమాద్ ఖుత్బా షరహ మీ హఫ్తా ప్రోగ్రామ్ గాలు మే బాయదని హతర ముహర్రం సాస్తే కషావిస్ నవార్ జోన్ దేహ సభ్యస్ వి హుకుర్దు మస్జిద్ సుల్తాన్ మహమ్మద్ కుర్ఫానుల్ ఆజమ్ గకురౌన్ హుకుర్ నమాద్ ఖుత్బా షరహ مي هفتا خطوه موضوعكي عاشور ادوس
3: الحمد لله الذي يعز المؤمنين ويذل الكافرين احمده سبحانه في كل حين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه قال الله تعالى في كتابه العزيز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون حمدهري مؤمن تكون عزت تري كوروا كافر تن نكمتي كوروا مان الله مان الله فيوا حق وگين الوكم ويبي اهن الها كنوا كمن الوهكي وان علمينگه ما نبييا محمد صلى الله عليه وسلم يكي مان الله گه الا كمرا رسولا كمن الوهكي وان హద్దవా బడుకురే విరస్ కలాకు ముహమ్మద్ గిఫాను గచ్చర్రా ఎకలే గిఫాను గ ఇతురు ఆలున మితురు సహాబీన ఖియామత దాదెంగి బేకదున్న రివెతి గొతుగా తబా వీహ ఎమ్మె తకుంగె మచ్చ సలవాత సలామా బరఖాయల్లవ్వాందేవే ఆమీన్. ఏ అఫహు దన్నార్ మ్యాం అల్లాహుగె అళుతకున్నే తియబామిహుం మ్యాం అల్లాహ బిరువెతివే ఎకలాగె మతీన్ హందుమకురే తియబామిహుం అల్లాహుగె హజ్రతుగా జవాబ్దారి వాన్ జహేనే దువహెన్ అన్నాణే కన్ దణె ఎకలాగె బిరువెతివే తక్వావెరివే మ్యాం అల్లాహుగె వహీ బస్ఫుళుగావే యౌమ లా తమ్లికు నఫ్సుల్ లి నఫ్సిన్ షైఆ వల్ అమ్రు యౌమ ఇదిల్ లిల్లాహ్ ఏయ్ ఎవ్వెస్ నఫ్సే అనే నఫ్సకం ఎవ్వెస్ కమెక్ కొద్దినుం మిల్కువెగెన్ నువా దువహె అది ఎదువహుం అమురు వెరికం మిల్కు అడిగెం వని హమ ఎకణి అల్లాహ్ షె
2: ఖుత్బా షరహ్ బల్లవల్ దెమ్ మే దోల్ మనక్ ప్రోగ్రామ్ బారడన్ దబని అషేఖ్ అతిఫ్ అబ్బు బకర్ ప్రోగ్రామ్ బౌద్ కొల దెబితి వర్ బడ శుక్రి అది వడన్ దెబితి మర్హబా ఇంగత షేఖ్ అది మే హఫ్తా ఖుత్బా మౌదుకి ఆషూరా దవస్
3: ముస్లిం అఖున్నె ముహర్రం మహుగే దిహవన దుహకి నువత ఆశూరా దుహకి హే ఒకమా మేకమా ఐబ్రెత్తక ఫిలావళుతకుం ఫురిగెం వా దుహె ఆశూరా దుహకి ఫిర్ఔనుగె కిబ్యాం మూసాగె ఫాన ఎకలేగ ఫాన తబా వీమీహుం సలామె కొద్దె విదువస్ ఫిర్ఔనా ఏనాగె బొడు లష్కరు గరగు కురెవ్వి ఎదువహుగా ఎహెంవె మూసాగ ఫాన తబావి మీహుం అల్లాహు తఆలాయ శుకురు వెరుముగ గొతుం ఎదువహు రోదహిఫి మిఫద హాదిసా తకుగా గిన గుణ వెగెంవా ఇబ్రెత్తక ఫిలావళుత లవ్వాఫావని మ్యాం అల్లాహం ఈమాం వా మీస్తకున్న ఎకలాగ రసూలుం బొడెతి ముసీబా ఎత్తకున్న ఆఫా ఎత్తకుం సలామె కురవ్వా గొయ్ ఎంగి మీస్తకుం ఈమాం కం హర్దనా కురెవ్వు మట్టక అల్లాహుగె వహీ బస్ఫుళుగావే సుమ్మ నునజ్జి రుసులనా వల్లదీన ఆమను కదాలిక హక్కన్ అలైనా నుంజిల్ ముమినీన్ మానై దెంగ్తి మన్రస్ కలాగె రసూలున్నా ఈమాం విమీహుం సలామె కురవ్వమే హమ ఎఫదాంగ్ ముమినుం దిన్నవా సలామె కురవ్వుమకి తిమన్ రస్ కలాగెయం ఒయిన్ హగ్గెకే ফিরাউনগে কিবাং মুসাগে ফানা একলেগে ফানা তাবাউবি মিহুং সালামে ভি হাদিসা ইং এগেনি মুসিবাতকুং সালামে বেবেনি ঈমান কামা ইসলাম কামুং কং আখিরাতুগা নাসরা নসীব লিবুমগে মগকি এই কং হামা এহেমমে মিং এগেনি ম্যাং আল্লাহং ইতুবারুকো একলাগে হযরত রুজুউবেগে মেনুবি দে দুনিয়েগাবেস সালামেতে নিক্কং আদি ম্যাং আল্লাহ কাফিরুয়ে দুনিয়ে ফাসাদ কুরং উলে মিহুন্না ম্যাং আল্লাহ গাদফাদ আযাব দেব্বা নেতি কুরাব্বানেকং
2: খুতবা মেওনি মহরম মহব দিহান দুহাকি নওয়াত আশুর দুহাকি হেওকমা ম্যাকমা ইব্রাত তাকা ফিলাউল তাকুম ফিরগাম বা দুহে কম গা বিদালুয়ে মেহবদ হাদিসা তাহুগা গিনাগুন ইব্রাত তাকা ফিলাউল তাল্লাবা ফাওয়ানি একলাঙ্গা ঈমান বা মিস্তাকুন্না একলাঙ্গা রাসূলুন বড়তি মুসিবাত তাকুম সালামে কুরাব্বা গে ইঙ্গি ঈমান কাং হরদনা কুরাব মাটাকা কামুগা বায়ান কল দবা ফা আশুর দুস নিসবাইবা মে হাসা বেহে গন কিকেত বিদালান কুবা তুমি হাসা এক
1: বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আদে আশুরা দোহাকি আগুন মুসলিমুন্না ওরা খাস দোহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে দোহগা রোদে হুননে দেন মি দোহা গুলিগেন মুসলিমুঙ্গে তেরে গাই কি জামান তো কে কে আকত হেন্দে কে মুন্দে এগে তেরে এমে মুহিম এমে নবিস এঙ্গে হাদিসা কি মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনুগে কি বা সালামে বি হাদিসা দেন হামায়াই কি মি নূহ গে ফানো গে নাকল জুদিয়া ফরবদিয়া বিহুনে এহেমবেস এবুনে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আলিফানু সালাম কুরউনি এদু হুয়ে আদি আদম আলাইহিসসালাম গে দোয়া ইজাব কুরউনি এদু হুয়ে দেন হামাই গোতা ইয়াকুব গে ফানু গে উললু গে ফেনু এমবুরি লিবুনি এদু হুয়ে মেগোতা ওয়ার গে নাহাকতা এমবুরি দেখেইফা এহনামে সালগন মেন ইয়াকিন কুরন জেহনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলগন মেন না বায়ান কুদিবা ফাওয়া হাদসা কি এই কং সাহা হাদসা এগোতং কলেগে ফানু কিবার নিবাবেন আসওয়ানি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াদালওয়ানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা ওয়াডাগিন গিন্নবীরু মদিনাগে ইহুদিন এদুহু রোদ হিফামুন দিয়াকাম আদেকামা মেদু সওয়াল কুরামুন এমিহুন জবাব জিনকামুন এই মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনুগে কিবান মিনজুই তুসকামা এহমিমা শুকুর ওরেম গতুন রোদ হিপেভিতি এমিহু রোদ হিফামুন দাকামা দেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করাবনি ও আনা আউলা বি মূসা তেমন কলেগে ফানে এম্মে আউলা কম বড় হয়ে গেমানে নোতে এম্মে ক্যাক কম বড় হয়ে গেমানি মূসা আলাইহিস সালাম দেন কলেগে ফানে দো রোদ হিপে এহমিমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদিন গেমি বুনুমা ইকরার ও লাফা ফা ইকান ইয়াকিন কো দিফা ফা মিয়ানি উম্মতা হাকিকাতুগা এ দোহা কি আশুরা দোহা কি কং মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউন গে কিবা মিনজুই দোহা কি দেন এ দু এ হাদিসা ইয়া গুলিগিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া রাত তাফসীল কো কিরতি কুরআন গে ইতা সূরাতে গে তা আয়াতে গ এ হাদিসা বায়ান কুরাবা ফাবে মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউন গে কিবান সালাম বু মাট্টাকা বানি ইসরাইল বা গা গে মিহুন্নাই কি মিসরুন নিকুম ওয়াডা গে রক্কনা দিমাল হিঙ্গে বিকাং আদি হিঙ্গাওয়া রক্কনু গা সেরিয়া দেউমাই কি বনু ইসরাইল বা গা গে মিহুন ফিরাউন গে লস্কর ফেনি মিহুন বুনমুন দিয়ে فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون فرعون گلاشکر فنونو ہندوگا موسا گفانو گے می اصحاب نوت موسا گفانا ایکوگا وی می ہن تبونمن دی ایمی ہن استیمننمنا ارا ہمکو تیمننمن گی دوس دووالانے انما موسى علیہ السلام کلے گفانو گے ثابت کلے گفانو ودانی قال کلا ان معي ربي سيهدين فہ ہن کو نوانے ہم ہلا ہن کو نوانے তেম কালেগে ফানা কি তেম কালেগে ফানুগে ভেরি ইলাহু ভেরি রব্বু ওডিগেম ওয়ে ইলাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা তেম কালেগে ফানা মগু দক্কানে দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাম বেগেন দিয়ে গই মে বায়ান করমানি ফাহাইনা ইলা মূসা আন আনিদরিব বি আসাকাল বাহর তেম আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম এঙ্গেইমে খান্ডুগা ইকালেগে ফানুগা আসাকলুম জেসুমা দেন কান্তা বেগেন দিয়ে গোতাকি ফম ফলাক ফকান কুল্লু ফিরকিন কত্তউদিল আযীম খান্ডু ফালি ফালি বেগেন বাবাং ইরিগেন দিয়ে মগুতাকে উফেদিগেন দিয়ে খান্ডুগে তেরে দেন ইয়া আকিগা এ খান্ডুগে লনু গান্ডু এমেওন না ফেনিগেন দিয়ে বড়দে ফারুবদে তাকিন এমেওগে বোমতে গো ফুলি ফাওয়াত দেন এ মগুতাকুন বানু ইসরাইল বাগাগে মিহুন আনে ফরাত খান্ডু গানে ফরাত দাতুরু কফা মিদিয়েই বারা মগু বারা গবিলাগে আহলুরিং ಎಫ್ವಾ ಫಿರಾನು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಫಾತುಂ ಫಿರಾನುಗೆ ಲಷ್ಕರಾಗೆ ಎಮಿಹುನ್ನ ಅರಾಹಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಕ್ಕಲ ಮಗುತಕ ರಂಗ್ ಹಿಂದು ಬನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಾಗಾಗೆ ಮೀಹುಂಗ್ ಅನಫರಾತ ಗೊಸ್ ಎಮಿಹುನ್ ಸಲಾಮ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲ ಕಂಡು ಕೂರಿ ಹುರಿಗುತಂಗ್ ಇಯಾದ ಕುರವಿ ಎಹಂದುಗ ಫಿರಾನು ಮಿಬುನಣಿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أين غرقوان كاري هندوغا أين مبناني بنو إسرائيل باغاغ ميهن إيمان في إله في واهن إله نوي أين أغي كبرو ريكا الله سبحانه وتعالى ننغن بنو إسرائيل باغاغ ميهن إله في واهن إله نوي تمنى ای الہن ایمان وجیمه تمنا کی مسلمی کے انو سینا کے اے توبہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول نکروا می حادثہ گا حقیقت گا می موسی علیہ السلام کے اصحاب نو تبنو اسرائیل باگا کے می ہن فرعون کے کی بہن سلام وے فرعون کے اڑوت کما اینا کے می جبار کم کے دشن سلام وے کی حادثہ گا
2: دین می حادثہ می لبگندا ابراہیم تہ کے کو بات شیخ
1: ಅದೆ ಅಳುವನ್ ಮೇನ ಮಿ ಹಾದಿಸ ವರಗ್ಗಿನ ಇಬ್ರತ್ತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಈಗಿತರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕ ಮಿ ಫೆನ್ನೆನೆ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ್ ಕಮಕ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ವಕೀಲು ಕುರೆಮುಗೆ ಬಾರುಗದಕ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಆಯ್ಕೀಗವಿ ಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂ ಬುಣಮುಂದಿಯೇದೆನ್ ತಿಮಣ್ಣಮ ಸಲಾಮ್ ವಾಣ ಎವ್ವಿಸಮಗೆನಂತೆ ಅಣಹೆ ಮುಣಾನಮ ದಿಕ್ಕೊಳು ಮಗು ಬಂದು ಎಫಮಿವಿ ಕಂಡ ಎರಿಗೆಂ ಕಂಡು ಹುರಸ್ಕೋ ಇನ್ಸಾನ ಕಣ್ ನುದೇವೇನು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವಸೀಲತ ಕಾಣುವುದು ಏ ವಸೀಲತೆನ್ನೆ ಅಣಕ್ಕೊಳು ಮೇತಿ ಫುರಿಹಮ ಹತ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ಬಾರುಗದ ಲಷ್ಕರೆ ಎಫದ ಬಿರುವರಿ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಹಾಲತು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲಂಗ್ ವಕೀಲು ಕುರುಮ ಅದೇ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲಂಗ್ ಇತುಬಾರು ಕುರುಮುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಕಮು ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಮಗೆ ದಕ್ಕವಾಣಿ ಕಮುಗೆ ಯಗೀನ್ ಕಮುಗೆ ಬೊಡು ಕಮುಗೆ ಸಬಬು ಕಲೇಫಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಯ ರಬ್ಬಿ ಏನ ನೋಡ ತಿಮಂಗ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಾಗಿ ತಿಮಂಗ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ಒಡಗಿಂವೆ ಎಮೀಮ ವಕೀಲು ಕುರುಮುಗೆ ಬಾರು ಮಿ ಫೆನಿಗಿಂದನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಯಿ ದೆಂಗಮ ಯಾಕಿ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲ ಎ ಹಾಲತುಗ ಇಜಾಬೆ ದೇವಿ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲನು ಹೆಂಗ್ ಇವ್ವಿಸ್ ಫರಾತಕ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಎ ಹಾಲತು ಮಿಂಜು ಕುರಾಣ ಬಾರು ಲಿಬಿ ಒಡಗಿನ್ ನುವಾ ಹಾಲತಿಂಗಿ ಎಹೆಂ ಎವ್ವಸ್ ಫರಾತಕುಂ ಎವ್ವಸ್ ಎಹಿಯೆ ವೆವೆಣ್ಣೆಂ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲಾಗೆ ಎಹಿ ಎಯಿ ಎ ಐ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂ ತಸವರು ಕುರಂವೆಸ್ ದತಿ ವರಂ ಅಜಾಬು ಕುರುವಣಿ ಗೊತಕ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲಾಗೆ ಮೂಜಿಜಾತಿಗೆ ಗೊತುಗ ಮೀ ಎಹಮೇಮ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಫದ ಹಾಲತೋಗ ಈಮಾನುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಈಮಾನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರುವೆಗೆಂದನಿ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕಿ ಕಾಫಿರು ವಿಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ನೇಗ್ಗಾಣಿಕಂ ಇತುರುವೆಗೆಂದ ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮೀ ಹಾದಿಸ ಹಿಂಗೆಂದೆ ಎಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲ ಈಮಾನೆ ನುವೆ ಎಫದ ಬೊಡು ಮೂಜಿಜಾತಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಲೋ ಕೋರಿ ಮತೀಗೆ ಫೆನುನೀಮ ಎಮಿಹುಂ ಎಮಿಹುಣ್ಣ ಯಗೀಮೆ ಕಷವರುವೆ ಮೀ ಕುಳದುವಂತ ಬಾರುವರಿ ಇಲಾ ಹೆಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಮೆಕ್ಕ ಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಬಾರೋ ವೀ ಕಮೆಣ್ಣೋಂಕ ಹೆಣ್ಣ ಮೀಸ್ ಹೇಗೆತರೆ ಎಬ್ಬೇಕು ಈಮಾನ್ ವಿ ಅಣೆಬ್ಬೇಕು ಕುಫುರುವರಿವಿ
3: ಅಹರುಗ ಒತಿ ಬಾರ ಮಹೆ ಹೇಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರ್ಮೆ ತೆರಿವೆಗೆಂವ ಹತರು ಮಹೆವ್ವೆ ಏಯ್ ವಿಧಿ ವಿಧಿಗೆಂ ಅಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಸ್ಕಮುಗಾವ ಝುಲ್ ಕಾಯ್ದಾ ಮಹಾ ಝುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ಮಹಾ ಮುಹರ್ರಂ ಮಹೆ ದೆಂಗ್ ಜುಮಾದ ಮಹಾ ಶಾಬಾ ಮಹಾ ದೆಮೆದುಗ ಅಣ್ಣ ಮುದರು ವಂಹ್ಯಾಗ ಮೀಹುಂ ಮ್ಯಾಕೊಂ ಹಿತ ರಜಬು ಮಹೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎದೆ ಬಫಾ ಕಲುನ್ನ ರಸುನ್ ಲೆವಿ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮದೀನಾಯ ವಡಾಗೆನ್ನವೀರು ಮದೀನಾಗಾವುಳುನ್ ಯಹೂದೀನ್ ಆಶೂರಾದುವಹು ರೋದಹಿ ಪಮುಂದಿಯ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಎದುವಹು ರೋದಹಿ ಪಣಿ ಕೀ ವೆಗೆಂತೋ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನ ಸುವಾಲು ಕುರೆಬುಮುಂ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣ ದೆನ್ನವಿ ಮಿಯದಕಿ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲು ಬಾಗಾ ಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅದುವ್ವುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವೀತಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ನಬಿಯ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾಣು ರೋದ ಪುಳು ಹಿಪ್ಪೆವಿದುವಹೆ ಎಹಿಂದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಫಅನ ಅಹಕ್ಕು ಬಿ ಮೂಸಾ ಮಿಂಕುಂ ಫಸಾಮಹು ವ ಅಮರ ಬಿ ಸಿಯಾಮಿ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾಣಟ್ಟಕ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುನ್ನ ವುರೆ ಎಕಂಕುರುಂ ಹಗ್ಗು ಕಂಬೊಡಿ ಇತ್ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣೆ ಮಿಹೆಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಎದು ಅಹು ರೋದ ಫುಳು ಹಿಪ್ಪವಾ ಮೀಸ್ತ ಕುಂಡಂ ಎದು ಅಹು ರೋದ ಹಿಫುಮಂ ಅಮುರು ಕುರವಿ
2: ಅದು ಮಿಸ್ತಕುಣ ರೋದ ಹಿಫಮ ಅಮರ್ಫುಳು ಕುರಬೇಕಮ್ಮ ಹೊತ್ತುಬ್ಯಾಗ ಅಮ್ಮಿವಣಿ ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ಇತರು ಇಕಲೈಫಾನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಿಫೆದೈನ್ ಮಿಕಂ ಕುರೆಯುಮಂ ಕೊಬ್ಯಾತೊ ಮಿ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಇಂಗಿಗೆಂದ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಕಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮದಿಫುಳು ಕುರಬಿ ತಿಮ್ಮಂ ಕಲೈಫಾನ ಎಮ್ಮೆ ಅವಲಾಹ ಕಂ ಬೋಡಿ ಹಿಂಗೇತೊ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಬ್ಯಾತೊ ಅವಳ್ಮೆನ ಮಿಕಮುಂ ದಲೀಲು ಕೊದ್ದೇಕಮಕ್ಕೆ
1: ಅದೇ ಅಳಗೊಂದ್ಮೆ ಫೊರತಮ ವರ ಮಿ ವಿಸ್ಲಿನ್ ಜೆಹೇ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಐಕುಳು ಇಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ನಬೀಕಮು ಗೊತ್ತುನ್ನ ಅದೇ ರಸೂಲು ಕಮು ಗೊತ್ತುನ್ನ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ಗೆ ಅಹೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಇಗುತ ವಿದಾಳು ಫಾಣು ನಬೀ ಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ಎಬ್ಬೆ ಕೊಣಬೇಕ ಅಹು ಅಂತ ಬೈ ಎಹಮೀಮ ಇಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಅಹಕ ಎ ಲಿಬುಂ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ನೋತ ನಸ್ರು ಏಕಮಟ್ಟಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಶುಕ್ರು ವರಿಯಣಿ ಎಹಮೀಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಿಯಮತ ದಿವ್ಯಾಫ್ ಕಮುಕ ವಾಣಮ ಅಳುಗನ್ ಮನ್ ಇಕಮ ಶುಕ್ರು ವರಿವಾಂಗ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ಶುಕುರು ವರಮಗೆ ಮಾಣಕಿ ಅಳಗೊಂದ್ ಕೊಂಬೆ ದುಲುಂ ಶುಕುರು ವರ ವಿಜಯ ಮೇ ಬೊಣಫ ಐಸಾಮ್ ಫುದ್ದಾಲ ಮನ್ನು ಅದಿ ಖಾಸಕೊ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವಣಿ ಅಳಗೊಂದ್ ಶುಕುರು ವರಿ ಕಮಗವಾಣ ಅಮಲು ಕುರ ಏ ಅಮಲು ಆಲ ದಾವುದ ಶುಕ್ರ ದಾವುದ ಕಿಫಾನುಗೆ ಅಹಲು ವರೆನ್ನ ಏ ದಾವುದ ಕಿಫಾನುಗೆ ಅಹಲು ವರೆನ್ನ ತೇಬಾ ಮೇಹುಂ ಶುಕುರು ವರಿಮ ಗೊತ್ತು ಅಮಲು ಕುರಾಶ ಎಹಿಮ ಅಮಲು ಅಳಗೊಂದ್ ಶುಕುರು ವರಿವಾ ಮಿಜೇನಿ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆ ಮಿಕಮುಗ ಅಳಗೊಂದ್ ಮನ್ನ ಮಿಫೆನ್ನ ಅಳಗೊಂದ್ ಮಂಗೆ ತೆರೆ ವರಗಿನ ಮೇಹುನ್ನ ಅಳಗೊಂದ್ ಮಂಗೆ ಆಯಿಲ ಕಾಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ವರ ಬೊಡತಿ ನಿಯಮತ್ತ ಲಿಬಿ ಫಾವಣಿ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಅಳಗೊಂದ್ ಮೆ ಮಕಿ ಹಿಸಾಬಕು ಎ ನಿಯಮತ್ತುಗೆ ಮತೆಂ ಹಂದಾಣ್ಣತ್ತಾದನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಳಗೊಂದ್ ಮನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದಿವ್ವಾ ಫಮಿವಣಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮಾ ಕೊರಿ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಏತ ಸತೇಕ ಹರೆ ಕೊರಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿವ್ಯ ನಿಯಮೆ ಫಾಗ ಕೊರವ್ವಾ ಇಕಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಶುಕ್ರು ವರಿ ವಡಾಗತಮ ಅಳಗೊಂದ್ ಮನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಿದನಿ ಅಳಗೊಂದ್ ಮನ್ ಮಿಯದು ಮಿವಾ ನಿಯಮತ್ತಕ ಶುಕ್ರು ವರಿವು ಅವುಲಾಕ ಬೊಡುಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೂಸಾ ಗಿಫಾಣ ಲಿಬೆ ವಡಾಗಿಂಗ್ ನಿಯಮತ ಶುಕ್ರು ವರಿವು ಕಲೇಫಾನ ಉದಾಣ ಅವುಲಾಕ ಬೊಡ ಎಂ ವಿಜ ಅಳಗೊಂದ್ ಮನ್ನ ಅಳಗೊಂದ್ ಮಂಗಿ ಕಾಬ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿವ್ವಾ ನಿಯಮತ್ತಕ ಅದಿ ಅಳಗೊಂದ್ ಮನ್ನ ಮಿಯದು ಮೀ ದಿರಿಯುಳುಮ್ಗ ಹುರಿ ಲೂಯಿಫಸೆತಕ ಅಮಿಕಂತಿದ್ದಕ ಅದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರುಮಫ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂಗ್ ಹಗೀಗತುಗ ಶುಕುರು ಇರುವ ಅವಲಾ ಕಂಬೊಡು ಎಹವೇಮ ಶುಕುರು ಇರುಗತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತ ಹಮ ಗಿನ ಗಿನ ಹೇ ಅಮಲ ತು ಕುರುಮ ಮತಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆ ಸಾಬಿತು ಅಂಜೆ
2: ರೆದ ಮಿ ಹುತುಬ ಬಯಾಂ ಕುರಬ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದೆ ರೋದ ಹಿಫಮ ಅಮರ ಫುಲ್ ಕುರವಿ ಕಮ ಸಂಗೇತ ಎಮ್ಮಿ ಮಿ ರೋದ ಹಿಫಮುಗ ಕೊಬೇತು ಅಳು ಮೆ ಅಮಲ್ ಕುರನ್ ಜೆಹೇನ ಗೊತ್ತಕ ಮಿ ರೋದ ಹಿಫಮುಗ
1: ಅದೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಂಗವಾ ದಿವ್ವಾಫಾಣಿ ಆಶೂರ ದೋಹೆ ರೋದ ಹಿಫಮಾ ಮೆದು ಕಿಹಿನಕ್ಕ ಹಿಫಂ ವಿ ಮಣಕಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಮದೀನ ಹಿಜುರ ಕೊರೆವೀರು ಯಹೂದಿನ್ ದಿ ಮುಹರ್ರಮ್ ಹೋಗಿ ದಿಹವಣದು ರೋದ ಹಿಫಮುಂದಿಯೇ ದೆಂಗೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಎಸ್ ಏಕಮ ಇಕರಾರು ಎಲವ್ವ ರೋದ ಹಿಪ್ಪೆವೇದು ಹಿಪ್ಪಾಫ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಹದೀಸ್ಗಳು ಕೊರವಣ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ದೆಂಗ್ ಕೊರಿಯ ಮೇಂ ಅಹರು ದುಡಿಯೇಗ ಲಹಟ್ಟಾಫಿಡ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾಣು ದೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಂ ಮೇಂ ಅಹರು ದುಣಿಯೇಗ ಲಹಟ್ಟಾಫಿ ಕಮಗಾ ವಾ ನಮ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾಣು ದೆದುವ ಹುರೋದ್ಯಾಂಗ ಹುಣ್ಣವಾಣಮೆ ಮಾನಕಿ ನೋವಣ ದೋಹ ದಿಹವಣ ದೋ ಹುರೋದ್ಯಾಂಗ ಹುಣ್ಣವಾಣಮೆ ಎಹೆನ್ ಹದೀಸಿಗ್ಗ ಭಯಾಂ ಕುರವ್ವಣಿ ತಿಬ್ಯಾಮಿಯು ಆಶೂರ ದೋ ರೋದ ಹಿಫಾಶೆ ಅದಿ ಯಹೂದಿನ್ನ ಖಿಲಾಫ್ ವಾಶೆ ಎಯ್ ಎದುವಹುಗೆ ಎದ್ದುವಸ್ ಕುರಿನ್ ನೋತ ಎದುವಹುಗೆ ಎದ್ದುವಸ್ ಫಹುಂ ರೋದ ಹಿಫಾಗಿನ್ನೆ ಎಹಮೀಮ ಎಗ್ಗೊತಕಿ ನೋವಣ ದೋಹ ದಿಹವಣ ದೋಹು ಹಿಫಂ ನೋತ ದಿಹವಣ ದೋಹ ಎಗಾರವಣ ದೋ ಹಿಫಂ ದೆಂಗ್ ದೆದುವಹುಣು ಹಿಫೇಣ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ದಿಹವಣ ದೋ ಹಿಫಮಕು ಮಸ್ಸೆದೆನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಸುನ್ನತ ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಕಂ ಬಡುವೆಗೆಂಬ ಗೊತಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ದೆದುವ ಹಿಗ್ಗ ರೋದ ಹಿಫು
3: ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಆಶೂರ ದೋಹುಗೆ ಮ್ಯಾಕಮಾ ಬೆಹೇ ಗೊತುಂ ಎಲ್ಮೊಯರಿಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಆಶೂರ ದುವಹು ಅಳುಕಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಎದುವಹು ರೋದ ಹಿಫು ನೂಂಗ್ ಎಹೆಂ ಅಳುಕಮೆಂ ಒಯ್ಕಂ ಎಂಗಿ ವಡ ನುಗಣ್ಣ ವಾಕಮ ಆಶೂರ ದೋಹು ರೋದ ಹಿಫುಮಕಿ ಎದೆವಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಇಬನು ತೈಮಿಯಾ ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸುನ್ನಬಿ ಹುಸೈನ್ಗೆ ಫಾನ್ ಶಹೀದೂಮಾ ವಿಧಿಗೆಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಬಿದು ಅತಕೆಂ ಈ ಜಾದು ಕುರಿ মিহেকু মারুবুমুং একমামেদু হিতাম কুরুমগে গতুং দীনা খিলাফু কাংকং কুরুমকি লবুয়েতি রাসূলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাহি কুরাব্বা ফাওয়া কামে মিগে তেরেং গিনা কান্তা তাকাকি ইসলাম দীনা খিলাফং উলে বাই মিহুনা মিদীনুগে দুশমনুং মিদীনুগে আসলু উসূলুতং উলওয়ালু মট্টাকা দীনুগে নামুগা তাআরফ কফফাওয়া কান্তা আদি মিনুনাস মুহররম মহুগে দিহবন দুহা গুলুয়া ইসলামী শরীয়তা খিলাফু এতক কামে বাই ফরায়তাকুং কুরে আদি মিফাদা বাই কাংকাং জামানি মিডিয়াগে তেরেং মুসলিম মুজতামা তাক ফেদিগেন দিউমা একু মিকহাল বাই ফিকুরুতা মুজতামা মুজতামা ওয়ান্নতং ফেনে মিফাদা আমালু তাক বিদুআ তাক দুরহলিবুমা তি এমমে তাকুন গোয়ালা নসিহাত তেরিবং কিরিত রাসূলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গে হাদিস বাস পড়ে গাবে মান আহদাসা ফি আমরিনা হাযা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদ মিদীনুগা নুহিমেনে কামে মিদীনুগে তেরে বাদ্দাফি মিহা দন্নারে ফহে একামিং এমিহকা রাদ্দু বেগেমবে আশুরা দুহু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইংগে বি ফাদান রোদা হিফা ম্যাং আল্লাহু কা হযরতা কুত্তম বেবে তো মাসেকে কুরে
2: আদমি মুহররম হগে দেহন দুহগে মে বাহক দক্কা রোলমেন মে বাইফারে বা আডুয়ে বাকি দুআয়ে করুন বাকি নামাজে করুন বাকি বাগুতেগা বাকি কামে করুন নওয়াতা এদুয়াকি বাকি এদুহকু বাকি বারক তাসবিহে কিউম লিবে মামফাতা কানুয়াতা বাকি কামাকা সালামে বানে কমবনে বাই কাহালা বহুস্তকাই চে মিআলমেন মে সোশ্যাল মিডিয়া কি মানসতক মুসেফেনি নুনিয়া বাই গমতোগে বাই দেনি মিস মিহিম বনে ফহনা বাই পোস্ট অফ সোশ্যাল মিডিয়া গালমে একা কোনাকা বা শেয়ার করন দাওর করবে এফত কঙ্কামকে কুরং রাঙ্গলো কান্তত বাই মিহুন এ বসওয়াল ফদ দেঙ্গে তো মিফত কঙ্কামা দে তরে কিতো কিকেত বিদালওয়ান
1: আদে হাকিগতুগা এফদ বুনন্তকা ওরম মুহিম হাদিসা কা গুলি ফমি মনি এই কারবালা কা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহীদ ওই হাদিসা মুহররম হগে দিহন দু আশুরা দু একলে ফান শাহীদ ওই ডাগতি দেঙ্গিয়া বিদিগেন এ জামানো গ একলে ফান শাহীদ ও মফহু ekama meduga hitama kori warabboda ekama hivvaru libegota amalu kori mihun ekama warabboda hitama kori den mi e jilu ne tigen deuma fau denga jilu ge mihun eduas tafatu gotaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zamanuga eduha nude qadar digen tafatu gotaka hitama faalu kurumuge dohig gota eduas faahaga kurum fashi mihun এদু আমিল্ল নসা গেল্লুন্দি মেফাদ ওয়ারগিনা দীনা দুরু কান্দত্তকে কুরমুঙ্গস মিজামান হামায়ং আরু ওয়ারগিনা তাফাতু একিকি কান্দত্তং উফেদিফামি ওয়ানি তেন আলগুনমে মে আবদুস হান্দান কুরম মে নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উইদালু ওয়ফাওয়ানি মান আহদাতা ফি আমরিনা হাদা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রদ্দ তিমঙ্কলেগে ফানু মিগেন্নে দীনুগা তিমঙ্কলেগে ফানু নুবুনেদে কামে আঙ্গ নুদে কামেং আলং উফদ্দাফি মিহে একং এ মিহক রদ্দু গেম ওয়াকাম দেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করবা ফানি মি দীনুগা আলং উফদ্দা কুম্মে কামাকি এই বিদআই কামা আদি কুম্মে বিদআই কে মাগফুরদুম কামা আদি কুম্মে মাগফুরদুম মানি নারকাক কাম হেমিম আলগুন মে মিফাদ কান্তত্তকা দুরহেলি ওয়ানজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতুন আলগুন মন না সাবিত ওয়ান ওতি এদো হামে গনে রোদে হিফুন দেন রোদেন হুননেরু আলগন মেন্ন কোরে বিদানে কান্তেত্তং এ বহরি রোদেন হুরেগিন আলগন মেন্ন সদগা কোরে বিদানে রোদেন হুরেগিন আলগন মেন্ন দোয়া কোরে বিদানে আদি হামে এগুত রোদ ভিল্লা ওগুত কি দোয়া ইজাব করবা ওগুত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দোয়া ইজাব করবা ওগুত এওগুত দোয়া কোরে বিদানে এন্নমাস ওকি খাস দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত আলগন মেন্ন হামে আসফেন নুই এহেমিমা এ দোহান খাস কগ্গিন কোরেবে গিনা কান্তেত্তা রোদেহিফুম ফিয়াওয়াগিন কান্তত্তাকি মিবুনা বিদা উম্মাতুগা আলং উফদিগিন আসফাওয়া বিদাআগে তরেন হিমনা কান্তত্তা এতেন কান্তত্তাকুন দুরহেলি ওয়াঞ্জে রাক্কা তরে ওয়াঞ্জে এরং আলগুনমেঙ্গে আগিদা আলগুনমেন্না সালামে কোরেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিন্নাওয়াদে দেবি মানহাজুগে মাথেগ আলগুনমেন্না সাবিত ওয়ানি এর
2: শেখ বার তাফসীল কোন্তি বিদাওলে দেবে আর খাস কথা খুতবা বালাল দেবে আর মেনাতে মে খুতবা মে হুর কন্ত দসরাহ কো দেবে আর মেনা কে বহুত কল হেদ কল দিতি বড় বড় শুকর দান মঙ্গে তো আদমেদে প্রোগ্রাম খুতবা শরহ বালদাল দেবি শেখ আতিফ আবুবকর মে হফতা খুতবা মাউদু কি আশুর আদবস আন হফতা গাওস ইসলাম মেরং আ প্রোগ্রাম কা বদলং গো মেদু গাম ইয়া হিসাব প্রোগ্রাম নিমাদা ফালন বাক বেলান আলম মেগে দুআ কি আলম মেনা কি হে বাস সাহা হে বাস কবুল করা বে কম গা আল্লাহ তাআলা লেবং আদি আলম মে কুরা কম মে আলক মে কম কুরা গন এম ফুরে মে তো করম গে হে তৌফিক আলম মেনা মে বর করেবং ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব আমিন ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

में गोल कीपर रिलवान वहीद, कैप्टन अहमद असद, अब्दुल्ला मिसबाह मोहम्मद फरहान, हुसैन अब्दुल्ला मोहम्मद मजीन, उबैदा खादिम अहमद, मोहम्मद साबिक, योशा बिन अली नशीद, दें हुजाम हमीद। कद्दू टीम बैदर मिफिनने भोजन में गोल कीपर दें एगतन इशाक अब्दुल गनी, हुसैन यालीन, इशाक रशीद, इमानुअल दें अहमद रिफशान, मोहम्मद शफा, निजार वाहिब तहरा, डोनाल्ड मेलाचियो, नदीम मोहम्मद, अन्नू अब्दुल्ला। मे टीम गए मैंने कुलंतर फुरतमेगारा कुलंतर धन्यवाद मेहर मेवाणी दंड तजार मेरे कणह रीत रे वर हिग्ञा वर नला मौसम वैरोल कम स्वर का हो रि हम वर नल रेखे धन्यवाद नगत का हूं हूं गदे बिस्नु आदे गुत हम रीत रे गुतम फाह कल आदे दे टीम गे गुरतल मफहग मिहार आलमन फिनगे मिदने क्लब ग्रीन स्ट्रीट मी दानी तांडुगे सहारा भी कुल गद्दू कुलमुंगेंदनी मजीदी मगवी कुल आदि उतरु कुलू